सदा भजो जगदीश, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां देशां, जिस पास बैठियां सोही है, सबना दा वेसां।

मन हर लेव मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पन वडाहे कर डंडौत पन वडाहे रहा साकत हर रा साध ना जानिया तिने अंतर हमे कंडाहे ज्यो ज्यो चल चुबे दुख पावै जम काल सहे सर डंडाहे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रव तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नामे एक है हर नामे ही सुख मंडा हे राह गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला आगे बसन सुहेला औद कटे दिन सो रह नारे मन गुर मिलका सुवारे रहा यो संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए प्याए रस कथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बेहाजो हर गुरते मन हे बसेरा निज घर महल पाप हो सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा अंतर जा

0: मुक कर संतन की तूरे अंतरजामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास है सुख मांग मुक कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तो दे आगे अरदास हमारी जी पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना ना जाने मेरा अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नू सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधावै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। हिन मणियां दे माण नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरा धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी का कोटान कोट धनवाद शुक्र है। आप जी ने अमृत वेले तो दर्शन दीदार बख्श के निहाल किया शाम के दीवाना की समाप्ति तो उपरंत आप जी के पावन सरूपां की सुखासन की सेवा पावन बाणी सोहिला साहब जी के पाठ होए हैं। सतगुरु समुची सेवा निभाद्या बाणी पढ़द्या हजूरी विचरद्या हुई भुलों की खिमा बख्शनी अगों तो समत बख्शनी जी समूह संगत की हाजरी तिल फुल भेटा दर प्रवान करना सब दिया शुभ भावनावान पूरिया करनिया आप जी के भाने अंदर दिन सुखों का बतीत होया है रहण आई है सतगुरु अपने भाने अंदर बतीत करा जी। आप जी के सुखासन तैयार हैं कृपा करो सुखासन अस्थानों चाले पाने की आग्ञा बख्शो विश्राम करो संगतान खुशे बख्शो अमृत वेले फिर दर्शन दीदार बख्श के निहाल करना जी। सही गुरमुख प्यारे मिलने जिन्हें मिलिया तेरा नाम चित्यावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबदा भला जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ताके निकट न आवै जामो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद। जप आदि सच आदि सच है पी सच पी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लख बार। चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना परियां पार। सहस सियाण पान लख होए।

त्रैण रजाई। मुंदा संतोख सरम पत झोड़ी ध्यान की करह बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत नंडा प्रतीदाई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत। आदेश तसै आदेश स्वादनी नादनाथ जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथ।

मंडल देश केते सद्बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन सुमंत केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिन केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथाय नाद विनोद कूड अनंत सर्मखंड की बाणी रूप तथाय घाट घड़ी बहुता नूपता की अंगलना कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तथा घड़िया सुरा सदा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तथा होर न कोई होर तथा जो महाबल सूर दिन मह राम रहे भरपूर तथा सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहि मरह न ठाके जाहे जिनके राम बसै मन माहि तथै भगत वसै के लोक रह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहार तथै खंड मंडल वर भंजे को कथै तय अंत नाम तथै लो लो आकार जेव जिव हुकम तिवै तेव कार वेखै वेखसाय कर विचार नानक कथना करड़ा सार।

नमस्तं सोए कै नमस्तं ने कै नमस्तं भूते नमस्तं जूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्पेशे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्दाते नमस्तं निर्काते नमस्तं निर्तूते नमस्तं अपूते नमस्तं लोके नमस्तं शोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निधाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं रंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं गम्ये नमस्तस्त्रमे नमस्तं जलाश्रि नमस्तं निराश्रि नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं मज्बे नमस्तस्तज्बे अदेशं देशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निर्दामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वतापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्देव नमस्तापेव नमस्ता जन्मे नमस्त सुवन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तावर्णे नमस्तामरणे नमस्तंजरार नमस्तंकृतार नमो सर्वतन्दे नमोस्तबन्दे नमस्तं निर्शाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं क्रीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्त्राग्ये नमस्तं सुहाग्ये नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोगजोगे नमो भोगभोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वे प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है नृसरीक है नृणम्भ है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है

अनंगी अनाम्य समस्ति स्वरूप ब्रह्मंगी परमाथ समस्ति में भूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूप नमो राज राजेश्वर परम रूप नमो जोग जोगेश्वर परम सद नमो राज राजेश्वर परम वृद्धि नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखीय परमीय भोगीय भोगते नमो जोग जोगेश्वर परम जोग

नमो दान्ये नमो मान्ये नमो रोग रोगी नमस्तं निस्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा मृतकर्ता दूरदर्दं अगं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अशेदी अभेदी अनाम अकाम समस्त उपराजी समस्त स्ताम तिराजो चाचरी छंद जले है थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेस हैं पुजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्त्वं रेनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राय राजे नमो साजे

गर्भ गंजन दुष्ट भंजन याद रूप असूत अंगहीन अभंगन आत्मिक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन भेक सर्वशास्त्र सर्वशास्त्र न जाने जे रूप रंगर एक परम वेद पुराण जाके नित भाग नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही बहुचित मद पहार संत प्रसाद।

हैं पवित्र है। पृथ्वी से अदि से अदृश्य कृष्ण भगवती शन तो प्रसाद कहते कि आश जैसे क्या भिज पैसा क्या गण कर्म क्या बन पर मैं क्या भिज लो कह क्या दित सो कह क्या भूत भरने के विभूत करने के राज प्रवाह है के धर्मंग तो जाह क्या सुख मरने के सर्वया भरने के जग पंकृति है क्षत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्मंग रूप के अनुभवन रूपे के आदा देव है कि आप अपेव है के चित्र महीने के कैदी ने के रोजी रजा के रही मैं रहा के पाक बेब है कि गैबुल गैब है कि अबुल गुना है कि सान साह है कि कारण को निंद है कि राज को रहिंद हिंद है कि कारण को निंद है कि राज को वाहिगुरु कि कारण को निंद है कि रोजी देहांद है कि राज करी मैं कि कर्मं करी मैं कि सर्वंकली है कि सर्वंगली है के सर्वत्र मान्य एक सर्वत्र दानी एक सर्वत्र गौण एक सर्वत्र पौन एक सर्वत्र देश है एक सर्वत्र भेस है एक सर्वत्र राज है एक सर्वत्र साज है एक सर्वत्र दीन है एक सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है एक सर्वत्र भेस है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पहन के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंकली में कर्म के परम भीम के अकलाना में के साहिब कला में के हुस्न उल वजू है तमाम उल रुजू है हमेशा सलाम में सली खत मुदा में गनी मुल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंद उल मकान ने जमीन उल जमान ने तमीज उल तमाम में रजू उल निदान ने हरीफ उल अजीम मेरे जायक यकीन है अनेक कुल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज उल निवास है गनी मुल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सोजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम सदैव काम है निर्बाध रूप है अगाध है अनूप है ओंकार रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनाम्य त्रिभंगी त्रिकाम्य त्रिभृगं त्रिबाध्य गंजे अगाध्य सुभंग सर्व भाग्य सो सर्वा अनुराग है त्रिभुक्त स्वरूप है अशज है अशूत है कि नरकुम प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है बेभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनास है उदास है तंत है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अदिख है अलेख है अपेख है अटह है अगह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है आजाद है अजाद है चरपण छंत है प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसा

आत्म परमात्म सदा सर्वसाथ अगाध स्वरूप निर्बाध में पूते अनंगी अनम्य त्रिभंगी त्रिकाम निर्भंगी स्वरूप सर्वंगी अनुपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं सरी के अमितो अमी के सदैव प्रवाह अजय है अजय है अजा है

सर्वंकर हैं, सर्वंकर हैं, सर्वपास्य हैं, सर्वनाश्य हैं, करुणा कर हैं, विश्वंकर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर हैं, करुणा कर हैं।

अटाह अनाथ प्रमाथे अजो नियमो नि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्म अपरम अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तुल प्रणासे अगंजलनामे सुमस्तुल निवासे नृकामंग बेपूते सुमस्तुल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुतर्मंग बेपूते

है। ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहूं सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, काहू ले पाहन पूज धरियो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह, काहू पशाह को सीस निवायो, को बुदान को पूजत है बस, को मृतान को पूजन तहायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो, को बुतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया

विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सुखियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जग बनायो देव दैत।

रचनी नी कहूँ फूल राजा हुए बैठाओ कहू सिम भयो संकुर कैठाओ सिगरी सृष्ट दिखाए अचम्भ आ जुगा स्वरूप सुयम्भ।

कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किल्बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्रीयस्तु जब पहि दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावै सोई दुख न तसै व्याप्त कोई अड़िल।

तो पै संभाले समनादन करते करना किया चिंता पे करनी ता छो करता चिंता करे जन्नो पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दी।

तुमरी महिमा वर्णन न सकौं, तू ठाकुर ऊच भगवान। वाहिगुरु साहिब जीओ, गौड़ी सुखमनी महला पंजवां, श्लोक एको अंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जा

अपने मन जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसहे त्याई तिसहे त्याई जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करहे पुन बहु दान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चेतारी

जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख से जय बसना, जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है, जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सहज समावे।

तैसा सुवर्ण तैसी असमाटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक हो पुर कहिया जीवन मुक्ता पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ आपे करन करावन जोग प्रपावै सोई फन होग पसरे आप होए अनत तरंग लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत

कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल, कबहू होए बहे बड राजा, कबू पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत मह आवे, कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिवें ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावे ध्यान, कबहू तट तीरथ इशनान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग।

ज्यों मंदर को थाम्य थम्मन त्यों गुर का शब्द मन हे असथम्मन ज्यों पाखान नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुरदर्शन देख मन होए बिगास ज्यों महादयान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै तिन संतन की बाशो तूर नानकी हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू त सहे चेतार जो कुछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बसते आई तेरे संग लपट रहे ओ रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती कर जाहे

के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आगास पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरिया सा पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण।

सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसहे सा भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वा सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत जन जा कर दे प्रवेश। सत निरत बूझे जे कोय नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत। जिस की श्रेष्ठ सो करने हार वरना बूझ करत विचार करते की मित न जाने की या नानक जो तिस भावे सो वरतिया। बिस्मन बिस्म पय बिस्मा जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी।

पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावनहार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बूजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप हृदय जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया जां कर दे विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया भैते निरपो होए बसाना जिस ते उपजया तिस माहे समाना।

सर्ब जियां का राखा सोए। काहे सोच करह रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपीए, पी अमृते मन तन त्रपीए।

सो जानै। प्रभु अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण का एक न जानो।

सेवा करत हुए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिस्वे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान।

अनकायो पाव न छूटन हरे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चाल स तेरे तना तू क्या लपटा वै मूर्ख मना सुत मीत कुटाम्बे अरबन तायन ते कहो हो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कमन छुटका।

या पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जाप अब गतिया गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किश पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचरिया गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही अचल जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल।

अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तन काहे स्वाओ वाट पैर प्रापे खूनेरा मिटे अज्ञान बिनसि अंधेरा सुनि उपदेश हिरदे बसावो मन से नानक फल पावो हलत पलत दुइ लिहो सुवार राम नाम अंतरि उरतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसे ते साज परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए

सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्विशा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।